ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहं तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रा सुन बैठे देवत्यां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहो सहा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए के वड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखां कियां वड्याईया। तुद विण सिद्धि किना ना पाईया करम मिले नाही ठाकराहिया। आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला आखां जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलियै दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साह

दुष्ट दुख ते लेहो बचाय। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अन को छय करता। श्री अस्तुज जब पए दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो यह सुरस ना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस फुन तीन कहिज। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम कुरान कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो।

गोविंद दास तुहार, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा, कार्य सब सुवारणा, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। आनंद

मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया नेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीव हरिया पौड़ी जिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुनके जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे भौजल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे सलोक महला पंजवां अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी यह विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप बारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनहु ना विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दोस्त खिन माहि विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख हो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमराया ऊंचे ते ऊंचा भगवान सगल सामग्री तुमरा सूत्र धारी तुमते हो वे सो आगे का तुम्हारी

इतनी सेवा प्रवान करने की भुला चुका। देखिये मां आ हूं अति सत्कार योग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले आप जन पौने 8 बजे तक चल रही लड़ीवार कथा सरवण कराऊंगे जी। ओनम जियो आया आओ ना पासों कथा सरवण करिए जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु महाराज वाहिगुरु।

भगत कबीर जी की बाणी विच बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हां नूं उन्हां ने संसार के सामने लिया। जो कर्मकांडा विच दुनिया के लोग पए सन उस विचों कढ़न की बहुत कोशिश की। जिवें एक हरिद्वार विच आ रहा है, ये हिंदू धर्म विच मनौत की गई मनिया गया कि जिहड़ा इंसान जिंदगी विच भावें कुछ भी किया होवे, जे मरण वेले वह आरे नाल अपने नूं दो टुकड़े करा ले तो स्वर्ग विच जाएगा। और लोगों ने यह गल सच्ची समझ के बहुते लोग गए उत्थे। उस तरह भगत जी का जन्म बनारस विच होया, जिथे कि पवित्र शहर मनिया जाता है। नेड़े दा ही एक होर शहर जिसका नाम मगहर सी बाणी विच बहुत वारी आउंदा है। यह भुलेखा पाया गया कि जिहड़ा इंसान मगहर विच मरदा है वह नरकां विच जाएगा, पर जिहड़ा काशी जां बनारस विच मरदा है वह इंसान स्वर्गां जाएगा। तो भगत कबीर जी ने इस भुलेखे नूं कढ़िया दुनिया के दिलों चों कि ऐसा हो नहीं सकता। जिहड़ा इंसान सारी उम्र पाप करता रहे वह भावें काशी विच बनारस विच जाके मर जाए, स्वर्गां च नहीं जा सकता। जिहड़ा इंसान भगती करता है वह भावें मगहर विच ही होवे, और केवल कहा ही नहीं वह चले गए। भगत कबीर जी ने मगहर विच अपना अंतला समा गुजारे, अंतले समय उत्थे आ गए ते लोकां नूं दसण वास्ते कि मैनूं कोई डर नहीं। जिहड़े परमात्मा की भगती करदे ने उहनां दे हिरदे विच स्वर्गां की कोई इच्छा नहीं होंदी, क्योंकि उहनां दे गुरु दे चरण ही स्वर्ग तों वड्डे ने। बाणी कहिंदी बार बार कहिंदे मैं कबीर जी ने इन्हां श्लोकां चुणे के आ कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहो, मैनूं नरकां दा कोई डर नहीं, स्वर्ग दी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे ते ऐसी कृपा की मैं हर वेले स्वर्गां विच ही रहिंदा। स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, क्यों चरण कमल की मौज मैं रहूं, प्रभु की याद उसके उपदेश चल के संसार की सेवा करके मैं हर वेले ही आनंद विच रहिंदा। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, मैं किवें दसा तुहानूं, दस ही नहीं सकदा। कितना आनंद है परमात्मा वाहिगुरु दे चरणा विच, गुरु दे चरणा विच जुड़न दे नाल, प्रभु दे गुण गाउण विच। कहिंदे ने कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं, ओ बोल ही नहीं मेरे को मैं कह सकां, देखा ही परवान। जिन्हां जिन्हां ने गुरु दे चरणा च जुड़ के आनंद माणिया है वह ही जानते हैं। आओ शब्द पढ़ते हैं जिस विच भगत कबीर जी ने एक बहुत वड्डा होर भुलेखा कढ़िया है। मगहर अते काशी दा जो उस शब्द भी इस विच है, आओ सारे पढ़दियां नाल बेनती कीती है। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही है। मेरे मालक मैं हर वेले, अब तब मतलब अब हुण इस वेले, तब किसे होर वेले उस वक्त जदों कुछ कर रहा हां, जब कब हर वक्त ही है प्रभु मेरा ध्यान मेरी सुरत तेरे चरणा विच हुंदी है, क्योंकि तेरी कृपा नाल मैनू किसी दुख तकलीफ जिहड़ी ने ओह मैनू ते मेरे ते कोई असर नहीं कर सकते। हम तो प्रसाद सुखी सद ही, संगतां प्यार नाल सरवण करो। उस तों बाद शब्द कोशिश करांगे जो भगत कबीर जी दी बाणी चों है, विख्या अज हो सुरत सुख आसा। मनुख सुखां दी आस विच पापां विशे विकारां विच फस जांदा है, ते उसका तरीका दसिया है कि मैं दुखां कलेशां विचों किवें निकलना है। सुख भी मिल जाण पर मैं पाप भी ना करा, पापां तों ही बच जावां। सो आओ रल के पढ़दे हां सत्संग।

अब नासी पुरख पाया परमेश्वर बा सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही

कर पूजा सकल पार ब्रह्म सासन का पमल को वै तिस भगवती की मातु तम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मंतन अर्पय विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नान कैसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रभु दै राम नाम मातम मैं शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नाया वै वेद प्राण स्मृत पूजै मूल सुखम मैं जान स्थूल चौ वरना को देव उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासन पावै जन को कर कृपांतर उतारै पस प्रेत मुक्त पात्र को उतारै सर्व लोक औखद नाम कल्याण रू मंगल गुणगाम गाऊ जुग की तैना पाइये धर्म नानक तिस मिला जिस लिखया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सतराम दास हाथ रात सुनद्री आया दास जसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गय परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोची पर सकल संगातम दास ऐसी युगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावै जीवन मुख सो कहावै तैसा अर्घ तैसा सुख सदानंद है नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी भिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित चित कर रखा तैसा थिन्ना वापे करण करावण जो प्रभाव है सोई फुन हो पस्त्र व्याप अंतरंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयालु सिमर सिमर नानक भई निहाल सलोक उसद करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभु रचि बहु विधानिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट मन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सरोते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कबका विचार है कई कोट नवत नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाही कई कोट प्रदेश परमाही जी जित लाभो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरक निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससिर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्शास्त कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरि मेर स्वरण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मिर्गा सब ते निर सबूते दूर नानक अपलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीवे मरे कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काल थक पाए कई कोट गीत तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कह हाथी कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रभ ते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे अपना नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो तातम प्रगास कई कोट तत् के बेती सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सत ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावै सोई हो किन में तापु तापन हार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर देखे अपने वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुगत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पतत उधारै आप करै अपन विचारै दोहा सिरिया का आप स्वामी केलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरना

0: માનુક તે ક્યાં હોય આવે જ્યોત સ્વભાવે સોઈ કરાવે સ્કે હાથ હોય તાં સબ કિછ લે જ્યોત સ્વભાવે સોઈ કરે અનજાન લિખ્યા મેં રચે જે જાણતા પના બચે ભરમે ભૂલા દે દિસ્તાવે નિમકમાં ચાર કુંટ ફિરે આવે કર કૃપા જ સપની ભગત દી નાનક તે જન ના મિલે ખિન મેં નીચ કીટ કુરાજ પાર બ્રહ્મ ગરીબ નવા જા કા દિષ્ટ કછુ ન આવે તિસ તત્કાલ દા દિશ પ્રગટાવે જા કુ અપની કરે બક્ષીસતા કાલિકા ન ગણ જગદીશ જીવ પિંડ સબ તિસ કી રાસ ઘટ ઘટ પૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રકાશ અપની બનતા બનાઈ નાનક જીવે દેખ પટાઈ સકા બનાઈ સાથ કર્મ કરાવણ સર્વ કુનાથ આજ્ઞાકારી બપુરા જીવ જ્યોત સ્વભાવે સોઈ ગુણ થિયો કબહુ ઉચ નીચ મેં બસે કબહુ શોભ હરખ રંગ હસે કબહુ નિંદ છિંદ વ્યવહાર કબહુ બકાસ પયાલ કબહુ બેતા બ્રહ્મ વિચાર નાનકા ફલા વનહાર કબહુ નિર્ત કરે બપાત કબહુ સોય રહે દિન રાત કબહુ માં ક્રોધ વિકરાલ કબહુ સર્વ કી હો તરવાર કબહુ હોય વૈ બડ રાજા કબહુ પેખારી નીચ કા સાજા કબહુ અપકીર્ત મેં આવે કબહુ ભલા ભલા કહાવે જ્યો પ્રવરા ખે તિવહી રહે ગુર પ્રસાદ નાનક સચ કહે કબહુ હોય પંડિત કરે બખ્યાન કબહુ મુન ધારી લાવે ધ્યાન કબહુ તટ તીર્થ સ્નાન કબહુ સિદ્ધ સાધિક મુખ્યાન કબહુ કીટ હસ્ત પતંગ હોય જી આનિક જુન પર મેં પરમિયા નાના રૂપ ચ સ્વાગી દિખાવે જ્યો પ્રભાવે તિવહ નચાવે જ્યો તિસ પાવે સોઈ હોય નાનક દૂજા વરણ કુએ કબુ સાધ સંગત પાવે સુસ્થાન તે ગૌર ન આવે અંતર હોય જ્ઞાન પ્રગાશ ઉસ સ્થાન કા નહીં વિનાશ મંથ નામ રતિક રંગ સદા બસે પાર બ્રહ્મ કે સાઉ જ્યો જલ મેં જલ આય કટાના ત્યો જ્યોતિ સંગ જ્યોત સમાના મિટકે ગવન પાય વિશ્રામ નાનક પ્રભ કે સદ કુરબાન શ્લોક સુખી બસે મસ્કીની આયા આપ નિવાર તલે બડે બડે અહંકારિયા નાનક ગર્ભ ગલે અષ્ટપદી જિસકે અંતર આજ અભિમાન સો નરક બાતી હોવત સ્વાન જો જાન મેં જો બનવંત સો હોવત વિષ્ટા કા જંત આપસકો કરવંત કહાવે જન્મ મરે બો જોન પરમાવે ધન ભૂમ કા જો કરે ગુમાન સો મૂર્ખ અંધા જ્ઞાન કર કૃપા જિસકે હૃદય ગરીબી બસાવે નાનકી હૈ મુક્તા કે સુખ ભાવે ધનવંતા હોય કર ગરવાવે તિન સમાન કા સંગ ન જાવે બહુ લશ્કર માન કુપર કર્યા સુ ફલ પી તરગા કા હોય બિના સબ થી આપ જાને બલવંત ખિન મેં હોય જાય સમંત કિસે ન બદે આપ અહંકારી ધર્મ રાય તિસ કરે કુવારી ગુર પ્રસાદ જા કા મિટે અભિમાન સુ જન નાનક દરગાહ પ્રવાન કૂટ કર્મ કરે હો તારે શરમ ફાવે સગલે બિરતારે અનિક તપસ્યા કરે અહંકાર નર સુર ફિર ફિર અવતાર અનિક જતન કર આત્મ નિત્રવે હર દરગાહ કો કૈસે ગવે આપસ કો જો ભલા કહાવે તિસે ભલાઈ નિકટ ન આવે સર્વ ગિરેન જા કા મન હોય કહો નાનક તાકી નિર્મલ સોય જબ લગ જાને મુજતે કછ હોય તબ ઇસકો સુખ નાહી કોય જબ એ જાને મેં કિછ કરતા તબ લગ ગર્ભ જોન મેં ફિરતા જબ તારે કો બેરી મીત તબ લગ નિચલ નાહી ચીત જબ લગ મુ મગન સંગ માય તબ લગ ધર્મ રાય દે સુજાય પ્રભ કૃપા થી બંધન તૂટે ગુર પ્રસાદ નાનક હો છૂટે સહેસ કટે લગ કુટતા વૈ તૃપ્ત ન આવે માયા પાછે પાવે અનિક ભોગ વિખ્યા કે કરે ન તૃપ્તા વૈ ખબ કમરે બિના સંતોખ નહીં કોરા જય સ્વપ્ન મનોરથ વૃથિ સબ કા જય નામ રંગ સર્વ સુખ હોય બડ ભાગી કિસે પ્રાપ્ત હોય કર્ણ કરાવને આપે આપ સદા સદા નાન કર જાપ કર્ણ કરાવન કરને હાર ઇસકે હાથ કહા વિચાર જૈસી દ્રષ્ટ કરે તૈસા હોય આપે આપ આ પ્રભ સોય જો કિછ કી નો સો અપને રંગ સબ તે દૂર સબુ કહે સાંગ પૂજે દેખે કરે વિવેક આપે કપે અનેક મરણ બિનસે આવે ન જાય નાનક સદી રહ્યા સમાય આપ ઉપદેશે સમજે આપ આપે રચિયા સબ કે સાથ આપ કિનો અપન વિસ્થાર સબ કિછ ઉસકાઉ કરને હાર ઉસતે ભિન કહો કિછ હોય તાંત નંતર એક કૈસો હોય અપને ચલતાપ કરને હાર કૌત કરે રંગ આપ હાર મન મેં અમન અપને માહી નાનક કીમત કહે ન જાય સત સત સત પ્રભ સ્વામી ગુર પ્રસાદ કિન્યા વખ્યાની સચ સચ સત સર્ગી ના કોટ મધિ કિન બિરલે ચીના ભલા ભલા ભલા તેર રૂપ સુંદર અપાર અનુપ નિર્મલ નિર્મલ નિર્મલ તેરી વાણી ઘટ ઘટ સુની શ્રવણ વખ્યાની પવિત્ર પવિત્ર પવિત્ર પુનીત નામ જપે નાનક મન પ્રીત શ્લોક સંત શરણ જો જન પરે સો જન ઉદરણ હાર સંત કે નિંદા નાનકા બહુર બહુર અવતાર અષ્ટપદી संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सुभा ते हीन, संत के हाथे को रखै न कोई, संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन कागजों लवै, संतन कै दुखन सर्प जुन पाए, संत कै दुखन तिलब जुन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब कुछ लै, संत कै दुखन ते सुबजाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नान संत पावै तो पी गत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई, संत का निंदक महत आरा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रूप, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का निमित्त, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जिनमें मरे, संत के दुख न सुख टिटरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे था लय मिलाए, संत का दुखी आदि बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचनाहे, अपन बीजा फीका, संत के दुखी को वरन रखनार, नानक संत पावे ता लय उभार, संत का दुखियों बिललाए, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो भाव किंद नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, जो वाड़ तिलके तुम्हें दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथया कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योति सुपावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोय, जैसा भावे तैसा कोई होय, पै कृत न मिट्टे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसको करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की सद करो दिन रात, तिसे त्याव सास गिरा, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आप नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तजो से आनक सुरजन हो, सिमरहु हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी मानु की टेक प्रति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अगाए, बौर न तृष्ण लग गए आए, मारे रखे को आप, मानु कह कुछ ना ही हाथ, जिसका हुकुम भू सुख होए, जिसका नाम रखंठ करोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिगन लग गए कोई, उस मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसन अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो फेक ठाकुर खारंग, सासु बिन सह सब संग, चरण चलो मारुगु बिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गै नानकु जल मत्था, बड़ भागी ते जन जग माई, सदा सुधार के गुण गाही, राम नाम जो करह विचार, चेतनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की सोची जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपना सुजय, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जिस कहत, सर्व रोग ते हर दिन रहत, वन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार्वम की जिस मन भूख, नानक दिशन लाग दुख, जिसको हर प्रमन चित आवे, सोसन सुहेला नहीं डुलावे, जिस पर भी अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुकम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में अपन किचु दृष्टाप थाप, अविनाशी ना ही किच खंड, धारन धारे ब्रह्मांडल कपे पुरख प्रताप, आप जपाए थ नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरह तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जपहि निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिस नाउ कृपा करह बिटपा कै नाम जुत पावे विश्राम नानक तिन पुरुषोत्तम करमान जो किच करह सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए हुए सो हुए करने हार पहचान है सोए प्रभ का किया जनमीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस त्यो बचे तिस माय समाये हुए सुख निदान उन्हों बने आए आपस को आप दिन मान नानक प्रभ जन को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंड नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अपनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचै कुए किस बिना ही तेरे किछ काम गत नानक जपे खर नाम रूपवंत हो ना ही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता हो क्या को गर्भ है जहाँ सब किस तिसका दिया दर्भ है असुरा जे को कहा वै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए वह दातार तिस दिन हार जन गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सूजन सुधा अरोग जो मंदिर थम है थमन क्यों गुरु का शब्द मने स्तमन ज्यो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग दूत सहज था जो कुछ कर सोई सुगमान भूला गाहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोपी पतंग राम नाम च फिर ते माए नानक पद से कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज माले हो मन मूल राम नाम हृदय में तूल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सुभ कोए मुखु जल हर दर कह सोए इहो अपार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साधके तोय तोय पियो और साधु को अपना जियो साध जी धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइये साध संगार कीर्तन गाइये अनेक बेगंते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संत है दर आया सर्व सुख नानक थे पाया मृतक हो जी वालनहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस चीज का उकरण है जो तिस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मली करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए या कह हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सची दृष्ट साचा आकार सच वर्त है साचा पासा पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन महराग मानुक की तू प्रीत त्याग तिसते परै नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे थाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन एहो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरण भरण जाका नित्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मिल सज्जा कै सर्व थोक सुनी है करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर गृष्ट में भोगी त्याहे त्याहे भगत सुख पाया नानक तिस्पुर का किने अंत न पाया जाके लीला कीमत नाही सगल देव हारी अवगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे चंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाकू परमाई जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बिद गिनो विस्तार प्रभवना सी एक अंकार नाना चलत करे किन माहि पूरे पूर्ण सब ठाई नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले चंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्र सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत ऊल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाए सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कुए नाम जपत ताकी गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसु करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख हटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सुवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपो हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहि समाना बस्त माहिले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाय बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानके ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवकाओ प्रपालनहारा, सेवकी रख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रवतारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर रखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखै, ताकि गत मित कोई न लखै, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल रखै, पसम करे लश्कर कोट लखै, जिसका सास न काढताप, ताको राखत दिखर हाथ, मानस जतन कर्तव भात, तिसके कर्तव बिरते जात, मारन राखे अवर न कोय, सर्व जिया का राख सोय, काही सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पियमृत इह मंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाहीं दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम है नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहु नानक जन कै सदका, बोलो जस जेह बाजन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करह भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने स्यों रह सुमाए, जो आओ सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह एक न जानू, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी उटले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श भाव मिटावे, अवस्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलो
1: सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ अटपरी, सतगुर सिखी करे प्रतपालु, सेवक को गुर सदा दयालु, सिख की गुर दुर्मत मलहरे, गुरबचनी हर नाम चरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिकुड़ भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर को जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आप उसको कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा कर हुए निकामी, तिसको होत प्रभु स्वामी, अपनी कृपा इस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जे हृदय हर नाम, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रखता, ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म, एक के आप नहीं के परम सह सियाण तयान जगी नैनक ऐसा गुरु पट पाकी पाई सफल दर्शन पेख पुनीत परसर चरण गतने मरीत पेट संग राम गुरवे और ब्रह्म की तरगवे सुन कर बचन कर न गाने मन संतोख आत्मपत्याने पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र अमर दृष्ट वेख्यो संत गुण व्यंत की तने पाए ना जिस पावे तिल है मिलाए जी पाए उस्तत ने सतपुरख पूर्ण विवेक काबू बोलना बहुत ब्रह्मी अगम्य गोचर ब्रह्मी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अन भगत बंधन करे चरण कमल हृदय सवरे सतगुरु हारी सतगुरु अपने नान जी प्रसाद ऐसा जपने वरस पावे जन को अमृत पीवे अमर सोए उस प्रकार ना ही करे बनास जाके मन परगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेव को दे ओ माया के संग ले को मन में राखे हर हर एक अंधकार दे प्रगासे नानक परमो दुख ते लैन हसे तो तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण ब्रेसे पाव चुका निरपोए बसे सगल व्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी साज संग जप नाम प्रारी तित पाई चूके परम गौण सत नानक हर हर दसवण निर्गुण आप हर गुण पी हुई कला तार जिन सगली हुई अपने चरित प्रवाह बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सलो साथ न चाले बिन भजन विखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नान क्यों तनसार मिट परी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और पाव सामी बसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण कारण सो प्रभ सुरत दृढ़ कर कहो नाम रवत एहो तन संचो हो भगवंत साजना का निर्बल मंत एक आस राखो मन माए सर्व लोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुर्तावे सो तन हर सेवा ते पावे ये सो को इत बाचे मीत सो सुख साधु सांग प्रीत जे शोभा को करे पड़े करने सा शोभा पज हर की शरण अन को पावे रोग न जाए रोग मिटे हर अख दिलाए सरबना मैं हर नाम दान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर के नाए दै दिस्ताव आवे ठाके ताको विघ्न न लागी कोई, ज्ञान के हृदय बसे और सोए। काल ताती ठांडार नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूर्ण व्यास, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अवनासी, कहो नानक काटी जो फांसी। तात विचार कहे जन साचा, जन मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यो रतन जन्म का हुए उदार, हर सिमर प्राण उदार। अनक पाप न छूटन हारे, सिमर सास वीर बिचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बशत नान पल पाए। सांग न चाल तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख बना। सोत मीत कटंबर बनता, इनते कहो तुम कौन सुनता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कौन छुटकार। आसस्ती रथ सवारी, झूठा डम झूठ पसारी। जिन दिए तिस बुझे न बगाना, ना विसार नानक पहचाना। गुर की मातू ले याने, भगत बिना वो डूबे सियाने। हार की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कह रहत गत पाओ। सार को सतर को नाओ, सहज सफाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरे उतर समैल, बिनस जाए हामी बिख पैल। होए टिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। शाड़ सियाण सगली मना, सासन पावे सतना। हर पूंजी संत करो विहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाय, एक सिमर एको मनाय। एक के गुण गाओ अनंत, मंत्र जा एक पवंत। एको एक एक हरियाप, ओ प्रव्याप। अनक विस्तार एक ते पे, एक राज प्राश्त गए। मंत्र यंत्र एक प्रवरता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलो फिरत प्रव्याया, परया तो सरनाई।
0: नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति ला। अष्टवदी जाचक जन जाचे प्रभु धाम, कर कृपा देव हर नाम। साजना की मांगो तूर।

भगत करूं प्रभु की नित नीत। एको टेको आधार नानक मागे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट महा सुख हुए, हर रस पावे बिरला कोई, जिन चाखे आ से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, शरण परे आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग, बड़भागी जब

जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सदसंग हजूरी, जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे का हाल न पानै, सो क्यों बिसरै जे की जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिकते काटै, जन्म जन्म का टूटा गाटै, गुर पूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहु एहु काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अपरह नाम जपावहु, भगत पाए करिय संसार, बिन भगति तन होसी छार,

तासु उपजी प्रीत प्रेम रसचाओ मंतने अंतर ही सुवाओ नेत्र उपेक दर सुख होए मन भिक्षै साध चरण तोहे भगत जना कै मंतन रंग

ही फिर जाप अष्टपति। जब अकार्य कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन सुमाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहो कि सह व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आवर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस को गनी। जब एक अरगम पार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अवनासी सुख अपनासन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपन आपा पिए चर जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला या फह पर दी, तह बेद कतेव का कुची। जब अपन आप आपुर तारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे। जय अपनू चापन अपनेरा, तय कहुन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद सुमाया, ऊहां किसह व्यापत मा, ऊहां किसह व्यापत माया। आपस को आप है आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जह कह एक एक भगवंता, तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप तियारा,

आप सुखाओ आप पहुंचाओ। जया प्रचु परपंच कारु तेह गुण मैं किन्नु विस्तारु पाप पुनत पही कहावत को नर को स्वर्ग बन छाव।

आपन खेल आप कर देखै, खेल संकुचै तो नानक कै। जय अभिगत भगत है आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दुहु पाका आपे धनी उनकी सुबानु बनी, आपह कौत करे आनंद चोज, आपह रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस अपना हिलावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह गंत अतुलै,

कह दृष्टारु अष्टपदी, आप कथे आप सुनने हार, आप कह एक आप विस्तार, जात पावे तो श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे लय समाए, तुम ते पिन नहीं किछ होए, अपन सु सब जगत परोए, जाको प्रभ जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत्र सबता कह हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राखै तिस कोय न मारै, सो मुआ जिस मनु बिसारै, तिस्ता जबर कहा को जाए, सब श्रेक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सुभात, अंतर बाहर छानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दा सदा बलिहार, पूरन पूरहे तयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामी रहो व्या, प्रतपालै जीन बहुपात, जो जो रचियो सुत सहत्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए।

इहो विसासु संत जना का पिकण सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने सु बचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुई सुई सुख माने, करन करावन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एकंकार, निकला लकी न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर गाज साप जनाए, नानक तिजन आप बुझाए, सर्वभूता वरतारा, सर्व नैना पेखन हारा, सगल समग्री जा का तनापन, जा साप ही सुनावन, जा निखिल बनाया आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद लिपतो रह, जो किछ कहना सुवापे कह, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावै ता लय समाए, ते हुए सुना ही बुरा उरे, कहो किने कछ करा, आ भला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की, आप साज धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राजता की, गत मित कही न जाए, दूसर हुए तन सोजी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक क्यों जान, जो जाने तिस दा सुख हुए, आप मिला लय प्रभु सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन कह सुआउ, जन कह समचितावै नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार, श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाउ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदि, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, साथ साथ सिमरहु गोबिंद, मन अंतर की उतरे छिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करहु, सास अगन सागर तरहु, हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद, सास संग भज परमानंद, नरक निवार उदारो जीउ, गुण गोविंद अमृत रस पीउ, चिचित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साधु के वचन, अमलीक लाल ही रतन, सुनत कमावत हो तो उदार, आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन अनंद करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देहे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाहे पाखिया पाओ अपार आखै मंगह देह देहे दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणे निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया सुमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे तीसरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नौर खाई कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे सुना सिद्ध पीर सुरनाथ सुना धरत धवल आकाश सुना दीप लो पाताल सुना पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना दुख पाप का नास सुना ईसर ब्रह्मा इंद सुना मुख साला हनुमंद सुना जोग जुगत तन पे

त्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादे बुझिया, जावे खा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कहे नानक ए नेत्र आंद से, सतगुर मिले देख दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, सच है सुनने नू पठाए, सच है सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुन हो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी, सच आलख वेडाणी, ताकि गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वह सच है सुनने नू पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कह, वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारा लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, तहे अनेक रूप नाउ नाव ने दो, तिसदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर रख कह, वाजा पवन बजाया। एहो साचा सोहेला, सच है कर गावो, गावो ता सोहेला कर सच है, जिथे सदा सच त्यावहे, सचो त्यावह जा तुद पावह, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख से सो जन पावहे, कहे नानक सच सोहेला, सच्चे कर गावहे।

आशमान हो करके दर आई संगत नु दर्शन दीदार बख्शिश कीते आप जी का कोटान कोट शुक्र है सतगुरु जी आप जी दी कृपा मेहराम दा सदका अज धन धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी ओ वड जो दा बहु पर उपकारी ऐसे दीन दयाल सतगुरु दतार पिता महाराज जी आप जी के पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिया खुशियां नु मुख रख दिया अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवानंद राव जी की अगाध बोध बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नितने बाणिया दे पाठ हुए गुरुदेव जी अगाध बोध बाणी पढ़ दिया हुईयां बेअंत भुलां कदी खिमा बख्शिश करनी अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना बाणी पढ़न सुन अते विचारण दी मत प्रदान करनी सतगुरु जी अमृत वेले बेअंत संगता ने आप जी के दर कर दिया नेम सहत प्रेम सहत हाजरियां भरिया तिल फुल भेटावां अर्पण कीतियां समूह संगत दिया हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनिया दरों घरों सबना नू नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच वाधे पाउणे घरां विच सुख वरताउणी सतगुरु जी बेअंत संगता ने मीडिया के माध्यम राही हाजिर

अपने टहलियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना काम क्रोध लो मोह हंकार तो बचाउना भावना सहित अपने दर घर दी सेवा दे योग कर लेना हर मैदान फतेह बख्शिश करनी चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना सदा अंग संग वर्तना सतगुर जीओ इस वक्त आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते।

0: सबनी छाला मारियां करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के
1: पौड़ी तुर करम जना को दुद पाया तत नी खसम ते आया इना जनता के वस कृष्णा ही तुदवे।

0: बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया।
1: तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिनकी ती सो पार पया कौन न करते किया बातें।

नानक मेर शरीर का एक रथ, एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझेता है। सत जुग रथ संतोख का धर्म अगै रथ वाह, फिर तय रथ जतै का जोर अगै रथ वाह, द्वापर रथ तपै का

उदरै माहि आए किया निवास। माता कै मन बहुत बिगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटया सब मह लिखिया तुर का, प्रगटया सब मह लिखिया तुर का, सतनाम श्री।

दुरिये मत के जापै साहु आवै के न आवै राम सावेला सो मूरत सा घड़ी सो बहुत सफल।

लाख कुला नहीं मुहि हर, जब लग नहीं मिले राम। मिलन कौ करूं उपाव किछ हमारा, नह चले राम। चल चित बित अनित प्रै बिन, चल चित बित अनित।

पतित उदारण हर बिरद तुम्हारा राम। पतित उदारण शरण स्वामी कृपा निध दयाला अंधकूप ते

त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना, त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी, नानक शरण सुमरथ स्वामी।

दुख सुख तुद पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो निता प्रति गुरु चरणा विच विराजमान हो करके घरां विच बैठ के इलाही बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी ने तर्स कीता है, अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ आप जी ने सरवण कीते हन। गुरुदेव जी कृपा करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह परिवारां नूं सतगुरु जी प्रदान करन। दरों करों चढ़दी कला नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके नवाजन जी। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शन योग ने बख्श लैणगे। आओ जो अज साहिब सतगुरु मीरी पीरी दे मालक छठम गुरदेव धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश 1595 ईस्वी नूं गुरु की विडाली श्री अमृतसर साहिब विखे धन गुरु अर्जन देव अते मात गंगा जी दे ग्रह विखे होया सी। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने, गुरु अर्जन देव दतार पिता महाराज ने 6वें गुरुदेव जी के आगमन पुरब से अकाल पुरख वाहिगुरु का शुकराना करदिया बेअंत शब्द उचारण किए जो आपां बाणी विच सरवण करते हैं। सतगुरु साचा दीया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरै मह आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जां जम्या पूत भगत गोबिंद का। ये सारे शब्द गुरु साहब सच्चे पातशाह की आमद की खुशी विच पंचम पातशाह जी ने उचारण किए सन। 6वें गुरुदेव जी ने गुरियाई ते बैठ के मीरी पीरी का सिद्धांत, भगती शक्ति का सिद्धांत, निरभाओ अते निरवैरता का सिद्धांत सिखां नूं बख्शिश किया सी। दतार पिता महाराज ने सिख धर्म अंदर एक नवी प्रणाली ढाडी प्रणाली का आगाज किया सी। जिवें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो लैके पंचम पातशाह तक गुरबाणी कीर्तन रूप विच जां विचार रूप विच ही गुरबाणी दे राही संगत नूं जोड़िया प्रेरिया जांदा सी, 10वें पातशाह जी ने ढाडी वारां प्रारंभ करके संगतां दे विच बाणी राही वारां राही जोश भर के जुल्म दे खिलाफ लड़न दा टटण दा सतगुरु दतार जी ने सिखां नूं हीया बख्शिश कीता सी। सो ऐसे वड्डे पुरख भारी पुरख दा अज प्रकाश पुरख है। प्रकाश पुरब है, समूह संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकां। गुरुदेव जी कृपा करन, सभनां नूं दरों करन चढ़दियां कला बख्शिश करन। आओ सतगुरां दे पावन आगमन पुरब की खुशी विच विशेष कीर्तन हाजरी है। सत्कारयोग भाई साहिब भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दा जथा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़ेगा जी। प्यार सत सरवण करिए, भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

महाराज के प्रकाश आगमन पुरब दियां लख लख लख लख वधाइयां। सिख गुरुद्वारा सहन हो जी महाराज के अस्थान ते सचे पातशाह जी दे दर्शन दीदार करिए और जन्मा जन्मांतरा दी मैल तो के जीवन यात्रा सफली बनाइए। इस जीवन विच सुकून शांति मन दी एकाग्रता एक रस बेचैनिया तो दूर होके सुख दी नींद घर परिवार नाल प्यार मोहब्बत इज्जत मान वडियाईया महाराज सब दे कारज रास करन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का

प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग।

प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर का

0: मां प्यान तपत भोगाम तय हर के नाम की मुँह पर छाम
1: जात काम तुझ आ करता है तय नाम कहर हर अमृत भरता है
0: सजना की बर्तन नाम संजना का मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट हर के नाम
0: हर जस हर सम दिन रात हर औखद सा

0: उत्तम हर की कथा नाम सरद धर दुख रसा
1: नाम की महिमा संत दिवस संत प्रताप दुर्ग सबन
0: संत का संग वर भागी पाई संत की सेवा नाम से आई है
1: नाम

0: राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार अगन माए होमत परान कनिक अश्व हेवर भूमदान
1: नवलीकरण करे जैन बार संजय
0: निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होमे मेल न जावे
1: हरके नाम संतर कचनाही नानक गुरुमुख नाम जपत जपकारी
0: कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे
1: सोच करे दिन सरात मन की मैल न संते जा
0: इस देही को वो साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरे
1: जल सो है वो दे अनीत सुत का वे खाची पी
0: मन हरके नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे पतित बहु मूच
1: बहुत ज्ञान जम का बहु व्याप्त है जतन कर कृष्ण न प्राप्त है
0: एक अनेक अगन नहीं बूझे कोट उपाव दरगे नहीं सीजे
1: छूट ना यू पयाल मुहे व्याप्त है माया जाल
0: अवर करतू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले फैस्त भाई
0: चार पदारथ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे
1: एक अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सुख जावे
0: एक को अपनी शोभा लोरे सात संगे हो मैं छोरे
1: एक को जन्म मरण से डरे सात जना की शरणी परे
0: इस जन को प्रभु दरस पे आता नानक ताके बल बल जाता
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान का समझा का मिटे बिनहान
0: आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा
1: जा का मन वे सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट कीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शीश साजना
1: सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुण्य लेपा
0: निर्जन को धन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाव
1: निवाणे को प्रभ तेरो मान सगल कथा को देवो दान
0: करण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे अपन संगा प्रभ राते
0: उमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर्ण जानस कोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मलेरिया
1: सगल उद्यम में उद्यम फला हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जसुन रसन बखानी

0: राख ले हो आपन कर कर्म
1: तूठा तुम तुम पैर दास जीव कंठल तेरी दास
0: मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा हमें सुख कनेरे
1: कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवंत।

0: मुख अवता का दुर्गंध
1: बिन सिमरन बिन रैन वृथा बिहाई मेघ बिना ज्यो के की जाए
0: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के नरारा दाम
1: धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुखो गंड लावत
1: धन नहार प्रभु परबीन बाहर भेद न काहू कीन
0: और उपदेशा आप न कराए आवे जावे जन्मे मरे
1: जिसका अंतर बसै निरंकार किसकी सीत पर संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चन पराता
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमाने
0: आपे आप कतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बिजावत नेरा
1: पाव से आन सगल ते रहते सब सच जाने आत्म की रहते
0: जिस पावत ले लड़ लाए।

0: जय प्रसाद सुगंधित लाभ है किसको सिमरत परम गत पाव है।
1: जय प्रसाद बस है सुख मंदर तसहते आए सदा मनंद।
0: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्या वंजोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे त्या कतवर लुभावे।
1: प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस का विजय।
0: ये प्रसाद तू सबको मान है मुक्ता को जस रसन मान है।
1: ये प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जब उतर गए मान पावे नानक पत्ते ती कर जावे।
1: ये प्रसाद आरोग कंचन देही लेवला बहुत इस राम स्नेही।
0: ये प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जग कहते।
1: ये प्रसाद तेरे सकल छिद्र टाके मन सरणी पर ठाकुर प्रताप।
0: ये प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊँचे।
1: ये प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि पक करे।
0: ये प्रसाद अपूखन पैरी जय मन ते सिमर सुहार।
1: ये प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन ते प्रभु को कबू न विसारी।
0: ये प्रसाद बाज मिलक तना राष्ट्र प्रभु अपने मना।
1: तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य सहते आई।

0: प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने कर नाद, जय प्रसाद कर नाद,
0: जय प्रसाद बोल है अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: जय प्रसाद परम गत पाव है, जय प्रसाद सुख सहज समाव है,
1: ऐसा प्रत्यागम प्रतिदा को गुरु प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार,
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप मन मूर्ता।

0: संग जाने परमानंद
1: साध संगना ही होता साध संग सजा सभ्यापु
0: जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई
1: साध संग न कब होता वै साध संग सदा सुख पावे
0: गोचर लहे साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग शैतान उचै साधु के संग महल पहुँचै
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुम्ब निस्तारे
1: साधु के

0: हर के गुण गाओ।
1: साध के संग नमन तीर्थ श्रय साध संग सर पर निश्चय
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग घट घट डीठा
1: साध संग आज्ञाकारी साध संगत प्रेम हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा बिना जाने जितता सुने जितता जाने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिसका प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल

0: नानक ओ पुर कहिया जीवन मुक्त
1: हार ब्रह्म के सगले ठाउ जित चित कर राखै तैसा तिन्नाउ
0: अपे कर्ण करावण जोग प्रभाव सोई फन होग
1: असरेवा कोई अंत करंग लखि न जाहि पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म

0: कोट होए पुजारी, कई कोटा चार बेवारी,
1: कई कोट कई तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिस होते,
1: कई कोटा तुम ध्यान तार, कई कोट कब का विचार,
0: कई कोट नौतन नाम दयावे, नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी,
0: कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिघातम निकोर,
1: कई कोट पर गर्व को विरह, कई कोट पर दुख न सह,
0: कई कोट माया श्रमाए, कई कोट पर देश भ्रमाए,
1: जित जित लावो तित तित लगना, नानक करके की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र कृष्ण सजाए,
0: कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट सचिय सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शीर्षक,
0: मंगल सामग्री अपने सुधारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे,
1: कई कोट राजस्थान सात्विक, कई कोट वेद प्रांत सुंदर शास्त्र,
0: कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत्र,
1: कई कोट किए शिर जीवे, कई कोट गिरिले स्वर्ण जीवे,
0: कई कोट जग किन पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिघाच,
1: सब ते नीरे सब मुझे दूर,
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी,
1: कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बोझो फिर,
0: कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट गाले थक पाए,
1: कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत,
0: जय जय भाणा ते तेरा के, नानक सबकी प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी, राम नाम संति लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहनते,
1: कई कोट दर्शन प्रत्यासु, तिनको मिलो प्रभ विनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
1: जिनको होया सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड,
1: कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार,
0: कई बार पसरियो पासार, सदा सदाए के कमकार,
1: कई कोट कीने बोपात, प्रभ से हो ब्रह्माय समात,
0: काका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो वता तुम करवा,
0: कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्र,
1: कई कोट नाम रस जीव है, अमर भय सत सत ही जीव है,
0: कई कोट नाम गुन गावे, आत्म रस सुख सहज समा

0: सोई करावे।
1: इसके हाथ हुए ताकत पिछले
0: अनजानत विखया में रचे, जे जानते अपने आप बचे।
1: पर नेकू लाज

0: दुखन जमते नहीं छुटा।
1: संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए।
0: संत का दुखन मत होए मलीना, संत का दुखन सो बाते ही
1: ना। संत के हते को रखे न कोई, संत का दुखन तान प्रष्ट हुई।
0: संत के पाल कर पाजे कर, नानक संत संग निंदक पीतर।
1: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन का दुखन पाग जवे।
0: संतन का दुखन सर्प जोन पाए, संत का दुखन त्रिग्ध जोन कर माए।
1: संतन का दुखन कृष्णा में जले, संत का दुखन सब कुछ चले।
0: संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच नीचाए।
1: संत दुखी का था को नाही, नान संत पावे तावे पीकत पाही।
0: संत का निंदक महा अताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई।
1: संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
0: संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन।
1: संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग।
0: संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख।
1: संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित।
0: संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग।
1: संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी।
0: संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते तर।
1: संत के दुखी को ना ही खाओ, नान संत पावे काले मिलाए।
0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी किता काज ना पहुँचे।
1: संत के दुखी को ध्यान फरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है।
0: संत का दुखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था।
1: संत के दुखी

0: संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख न सृष्टि कोई, जैसा पावे तैसा कोई कोई,
0: दया कीर्तन मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर किसकी करने हार, सदा सदा किसको नमस्कार,
0: प्राप्ति उस्तत करो दिन रात, तिसहत आभो सास ग्रास,
1: सब कछु वरतै तिसका।

0: सदा सुहेला कर ले जियो।
1: नैनो पेखा गुरका रंग साथ संग सब संग
0: चरण चलो मार को बिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गय नानक पूजल मथा
0: भागी ते जन जग माहे सदा सदा।

0: अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल
1: रे
0: मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभया।

धनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है। ये को हुए बह दातारू, तिस दिन हार जान गावारू। जो मंदिर को थम मैं थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन। जो अंधकार दीपक प्रगासु, गुरु दर्शन दे।

0: पाई है।
1: दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो लस लोभी पतंग। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। लाद खेप संत संचाल, अवर त्याग विखिया जंजाल। यो व्यापार बिरला व्यापार है, नानक ताकै सद बलिहार है।

0: अनिक बिगंते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे मृत को जीवा लनहार भूखे को देवता दार सब किस तिस्काव करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग
1: सदा दिन रहनी सबके ऊंचे मले।

0: नेत्र फोर्ट इसका मंत्र ज्ञान मैं हो
1: अंदरू मंगल सद जाके सर्व तो सुनिए करता
0: है राज में राज जोग में जोगी तप में पीसर ग्रस्त में भोगी
1: क्या आई भगत सुख पाया नानक का न पाया
0: ना की लीला की मित्राए सदा देव हारे अवगाए
1: पिता का जन्म के

0: प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद है पे सच नानक होसी पे सच अश्वरी
1: चरण सत सत पासन पूजा सत सत सेवदा
0: दर्शन सत सत

0: सतपुरख जिन जानिया सतपुरख तिसका नाऊ किसकै संग सिखुदर नानक हर गुण गाऊ
1: सदगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक हो गुर सदा दयाल
0: सिख की गुर मत मल गिरे गुर बचने हर नाम उचरे
1: सदगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख भी कारते हटे
0: सदगुर सिख को नाम संदे गुर का सिख गढ़
1: सदगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सदगुर सिख को जिये नाल समारे
0: गुर के अग्रेसिव जो रहे गुर की आज्ञा मन में चहे
1: आपस होकर कच्छ में जनावे हर हर नाम हृदय सद दयावे
0: मन विच सतगुर के पास किसके के कारगिरा
1: सेवा करत होए ने कामे तिसको होत परापत स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की जग जाने
0: वो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ
1: धर्म निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आग नहीं कछ पर
1: सियानप लिया न जाइए नानक ऐसा गुरु वट भागी पाइये
0: सफल दर्शन देखत पुनीत
1: देखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे
0: सुनकर वचन करन आघानी मन संतोखा तुम पतियानी
1: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दिश पेके हुए संत
0: गुण बेअंत की मत नहीं पाए नानक विश्वा है पिछले मिलाए
1: वाहे पुस्तक अनेक सत पूरक पूरन विवेक
0: आहू बोल न पहुंचत प्राणी गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई
0: अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है
1: सत बलिहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
0: एहो हर सुपावे जन को अमृत पीवे अमर सोए
1: पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रकटे गुंता
0: आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेशे को दे
1: ओ माया के संग न ले मन में राखे हर हर एक
0: अंधकार दीपक प्रगाशे नानक परम दुख तैसे नाशे
1: तपत माये ठाड वर्ताई अनंत दया दुख ना टेवाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भाव चुका निर्भो होए बसे सगल व्याज मन ते के नसे
0: इसका साथिन कृपा तारी सास जप नाम मुरारी
1: हित पाई चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर जस श्रवन
0: निर्गुण आप सरगुण पियो ही कलाता जिन सगली मोही
1: अपने चरित्र आप बनाए अपनी कीमत आप पे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एक को सोए
1: पोत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगाट साथ के संग
0: राच्य

0: संत जनामिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
1: अवर पाप समीत विचार चरण कमल उठारो
0: कर्ण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर बथ
1: यो तन संचो हो वो भगवंत संत
0: एक आसरा को मनवाहे सब रोग नानक मिट जाहे
1: जिस तन को चार फुट उठावे सो तन हर सेवा पावे
0: जिस सुख को नित बाछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करे भली करनी सासु का भज हर की चलनी
0: अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक कर गए प्रवान
0: मन पर बोधो हर कहनाए दह दिस्तावत आवे ठाए

0: भगत पाया तुम परवान।
1: चितकर जायबत अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी।
0: कत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सुख कत साचा।
1: आवागमन मिटै प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव।
0: इउं रतन जन्म का होइ उद्धार हर हर सिमर प्राण आधार।
1: नानक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे।
0: हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए।
1: संग न चालत तेरा तना तू क्या लपटाव है मूरख मना।
0: सुतमीत कुटंबर बनता इते कहो तुम कवन सुनाता।
1: राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार।
0: आस हस्ती रथ सुवारी झूठा टंप झूठ का सारी।

0: अंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हरयाप पूर्ण पूर्णो प्रव्याप
0: अनेक विस्तार एक ते पे एक अराध पराछत गए
1: मन तन अंतर एक प्रभु रत्ता गुरु प्रसाद नानक की जाता।

0: पुरख पुरख पत होता कह बिन मैल कहो क्या तोता। जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कहो कीत।
1: जय ज्योत स्वरूपी।

0: शोभा अपन संग बनाई तब खवन माए बाप मित्र सुधाई
1: जय सर्व कलाया पै प्रवीण जय वेद कृपा सुधीन
0: अपन आप उधार है तो सगन आप सगन कहाँ विचार है
1: जय अपन ऊच अपन आप लीला तय कौन ठाकुर कौन कही है
0: विस्मन विस्मन

0: हे अभिव्यक्त भगत दयापु जय प्रसर पासार संत प्रतापु
1: थनी उनकी शोभा उन्हें बनी
0: आनंद
1: जिस पावे थे साफ करना।

0: ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप।
0: प्रित पाले जीवन बहु भात, जो जो रचियो सुत से ध्यात।
1: जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या।
1: जन लागा हरि कह नाही, इसकी आस न बिरथी जाए।
0: को सेवा बने आई, हुकुम बूझे परम पद।

0: अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक आसनित त्याग गोहत रंग संत जना की तूर मन मांग
1: छोड़ विनती करो सागर करो
0: हर धन के।

उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग।

प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए हर तनखाड़ चले जन सोए नानक जिसह पर